कौन फूल थे? कौन फूल थे? नहीं मेरा पैसा है, कैसे निकलने आने आने आने जो स्टॉक होना है।